0: नमस्ते, मैं हूं उदयन फ्रॉम द बैंड कोमारोसी और आप सुन रहे हैं प्रॉगकोर रेडियो, द ओनली ट्रू प्रॉग रॉक एंड इंडी स्टेशन इन मॉन्ट्रियल।
1: प्रॉगकोर रेडियो, द ओनली स्टेशन इन मॉन्ट्रियल डेडिकेटेड टू द प्लेइंग ऑफ